अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आज की सुबह सभी श्रद्धालुओं के लिए एक नई आशना, नए उत्साह और नई उम्मीद का संदेश लेकर आई है। 6 दिन तक मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बायस निलंबित रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा आज फिर शुरू हो रही है। ये खबर न सिर्फ हजारों यात्रियों के लिए खुशी का बायस है, बल्कि उन सब की धीरज और श्रद्धा की भी जीत है जिन्होंने पूरे सब्र के साथ इस पल का इंतजार किया।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यात्रा जो है वो 6 दिनों के बाद जो है फिर से अनुमति मिली है यात्रा के हवाले से, और एक नई जो है उम्मीद का सूरज आज तुलू हुआ है। श्रोताओ, हम आने वाले समय में जो है इस विशेष प्रसारण के हम संवाददाताओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। तमाम जो क्षेत्र हैं हमारे, जम्मू, रामबन, गांदरबल वगैरह, जहाँ जहाँ भी, या जो हमारा नेशनल मार्ग है वहाँ पर क्या परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन तब तक जो है, जब तक हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण। सुनिए ये भक्ति संगीत।
1: आत्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीय।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। आज की इस नशरियात, इस विशेष प्रसारण में मैं आपके साथ रहूंगी 12:30 बजे तक, और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यात्रा के लिए जो है फिर से अनुमति मिल गई है, और हमारा जो लंबा इंतजार था दर्शन के हवाले से वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन आपको बताते चले कि फिलहाल सिर्फ बालतल मार्ग से ही यात्रा जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है खराब मौसम के कारण पहलगाम मार्ग पर यात्रा अभी भी निलंबित रखी गई है, और इस रास्ते से किसी भी यात्री को जो है यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो प्रशासन की हिदायत का पूरी तरह से पालन करें और सिर्फ अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है, आधिकारिक सूचना जो है उसी पर भरोसा करें और उसी के तहत जो है अपनी यात्रा के हवाले से जो है प्लान करें। आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अंबाजी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं जावेद मेहराब साहब, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भगवती नगर है, जम्मू में जहां यात्रियों की जो है फिर से अनुमति मिली है यात्रा के हवाले से, तो जानना चाहेंगे कि क्या उत्साह वहां पर है। तो जावेद मेहराब साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी और खुशी की खबर श्रद्धालुओं के लिए है। जैसा आपने कहा कि यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से पवित्र श्री अमरनाथ जी के तीर्थ यात्रियों को घाटी की ओर रवाना होने की अनुमति मिल गई है, और ये सबसे बड़ी खबर कल शाम को ही आ गई थी, जिससे

0: यहाँ जो निवास स्थान भगवती नगर है, उत्साह का माहौल था। यहाँ बाबा बर्फानी के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जयघोष और नारे और भजन, बहुत जबरदस्त यहाँ जश्न था, क्योंकि 6 दिनों के तक स्थगित रहने वाली पवित्र तीर्थ यात्रा को जब जैसे ही ये अनुमति की खबरें सामने आई, और कल हालांकि यहाँ दोपहर के बाद मौसम ठीक होने लगा और जैसे ही सूर्य देवता ने दर्शन दिए तो यहाँ तीर्थयात्रियों के चेहरे मौसम के इस रुख से रोशन हो गए और बहुत खुशी हो गई कि मौसम एक बार फिर ठीक होने लगा और आसमान जैसे ही साफ हुआ और सूर्य देवता ने दर्शन दिए तो एक अलग ही माहौल था श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश, तेज बारिश हो रही है। पूरे संभाग में नदियां उफान पर थी, कई जो जानी और माली नुकसान भी संभाग में हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम का कल रुख बदला तमाम लोगों के और उसके साथ साथ श्रद्धालुओं के को भी बहुत खुशी और बहुत जो हर्ष उल्लास था ये यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में भी देखा जा सकता था।
1: जावेद साहब, हम तक जो इतलात मिली पहुंची है वो ये है कि सिर्फ एक मार्ग जो है बालतल मार्ग जो है वहां से अनुमति मिली है, उस हवाले से हमारे श्रोताओं को जो है अपडेट्स दीजिए।
0: जी, मैं आपको बताऊं कि आज 223 गाड़ियों का 18वां काफिला यहां से रवाना कर दिया गया।
1: जी,
0: आज रवाना होने वाले, देखिए ये जो यात्रा है क्योंकि ये पूरी तरह से मौसमी हालात पर ही इसका संचालन होता है तीर्थ यात्रा का, ये क्योंकि पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है और इस पहाड़ी श्रृंखलाओं के सफर में सबसे ज्यादा जो प्रशासन की जो अनुमति होती है वो सुरक्षा और ये हालात जो सड़क और मार्ग के जो हालात है उसको देखने के बाद ही सुनिश्चित किए जाते हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा कि एक ही मार्ग की तरफ रवाना होने की अनुमति मिली है, क्योंकि बालताल मार्ग जो है ये आसान मार्ग है, लंबा मार्ग जरूर है लेकिन आसान मार्ग यही है, और जो पहलगाम का प्राचीन मार्ग है वो मुश्किल मार्ग है, और यहाँ पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर पहलगाम खत्म होते ही शुरू हो जाता है, और जो बालताल है वो कदरे इसके मुकाबले आसान सफर है। हालांकि वहां से भी पहाड़ी श्रृंखलाओं को पैदल मार्ग को चल के ही आपको तय करना पड़ता है, तभी आप पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन बालताल के मुकाबले जो है पहलगाम का जो मार्ग है वो सख्त है, और वहाँ मौसम को पूरी तरह से देखते हुए, क्योंकि यहाँ पहलगाम के ऊपर भी साउथ कश्मीर जो है, यहाँ का जो दक्षिणी कश्मीर है, यहाँ बहुत जबरदस्त बारिशें हुई, सबसे ज्यादा बारिशें दक्षिणी कश्मीर में ही हुई।
1: जी।
0: इसीलिए ये खास तौर पर ये प्रशासन ने बिल्कुल इस को पहले सुनिश्चित किया होगा, उसके बाद ही बालताल की तरफ ही सिर्फ जाने की, रवाना होने की अनुमति मिली है। लेकिन ये भी एक खुशी की खबर है क्योंकि दो रास्ते हैं, दोनों तरफ लोग ज्यादातर, हालांकि पहलगाम तीर्थ मार्ग को ही, क्योंकि वो प्राचीन मार्ग है, यहाँ से ही ज्यादातर तीर्थ यात्री जो है श्रद्धालु जाना चाहते हैं, लेकिन रवाना होने की और मौसम के ठीक होने की जो खबरें हैं उससे जो उम्मीद है और बढ़ गई है। जो पहलगाम के तीर्थ रास्ते से, मार्ग से भी आना चाहते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी जल्द ही खुशी की खबर जरूर आएगी, और जल्द ही, क्योंकि प्रशासन भी फैसला तब लेती है जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से हालात को पहले समीक्षा की जाती है, उसके साथ साथ मार्ग की जहाँ तक बात है वो भी उसको पूरी तरह से साफ होना चाहिए, और तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि फिलहाल सिर्फ बालताल मार्ग की तरफ जाने की ही अनुमति दी गई है, और आज लगभग रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 6,264 है, जो बहुत ही बड़ी हजारों बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा आज निकली है, तो एक बहुत अच्छी हालात में और मौसम बेहतर मौसम के हालात में, जहाँ जानकारी मिली है कि कश्मीर में भी मौसम स्थिर हो गया है।
1: जी। यहाँ अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, तकरीबन क्या भविष्यवाणी जो है ताजा तरीन आई है, और कब तक जो मौसम है मुकम्मल

0: और लगभग 8,000 के करीब इस निवास स्थान पर जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा था वो जमा था, और यहाँ तमाम तरह के प्रबंधन थे। और हालांकि जो तीर्थयात्री पिछले 6 दिन से यहाँ रुके हुए थे, वो अपने आप को कहीं पूजा अर्चनाओं में, भजन में, गीत संगीत में अपने आप को
1: बिल्कुल
0: व्यस्त रखने की
1: जी।
0: कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही ये मौसम सुधरने की खबर आई तो आसमान साफ हुआ, तो उम्मीद की जो किरण है वो उनके
1: बिल्कुल
0: चेहरे पर देखी जा सकती थी, और शाम होते मौसम बेहतर होने की खबरें, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो युद्ध स्तर पर काम करने की बात, सड़क को बेहतर करने की खबरें सामने आई, वो भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बेहतर
1: खुश
0: थी
1: रहे
0: और बहुत ही
1: बिल्कुल
0: खुशी की बात थी। और इस बीच यहाँ भगवती नगर निवास स्थान पर बाबा बर्फानी के फलक शिगाफ जय घोष गूंजने लगे, और 6 दिनों का लंबा इंतजार जैसे श्रद्धालुओं के लिए एक एक मिनट को सोचकर गुजारने वाला था, और इस
1: बिल्कुल
0: इंतजार में श्रद्धालुओं को हालांकि थकन भी हो रही थी, लेकिन अपने जोश के जज्बे को बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने समेटा हुआ था, और उन्हें ये उम्मीद थी कि जल्द ही यहाँ हालात ठीक होंगे। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ जो उपराज्यपाल हैं और जो श्री
1: जी
0: अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उन्होंने यहाँ एक बैठक भी की और खास तौर पर ये दिशा निर्देश भी दिए कि जो सड़क है बारी जो सड़क है और बारी बारिश के बावजूद यात्रा मार्गों से तत्काल मलबा हटाने, बाढ़ सुरक्षित उपायों को मजबूत करने पर उन्होंने निर्देश दिए, और साथ ही 24 घंटे के अंदर प्रबंधन को और मजबूत करने, व्यवस्था को और बेहतर बनाने, और यात्री मार्गों की सफाई स्वच्छता को नियमित रखने के, और राशन LPG और पर्याप्त भंडार जो है खाने पीने का उसको सुनिश्चित करने को कहा। इस तरह से जो ये यात्रा है उसके मार्गों पर बिना जो उन्होंने, हालांकि सुरक्षा को लेकर भी ये बैठक हुई क्योंकि इस सुरक्षा बैठक में फौज, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, सभी तरह
1: बिल्कुल
0: की एजेंसियां उस बैठक में मौजूद थी, तो सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर कदम उठाए गए। इसमें बिना रजिस्ट्रेशन के सेवा प्रदाता जो है, हालांकि यहाँ हर जगह पर आपको सेवाएं करते लोग, स्थानीय लोग, स्वयंसेवी
1: बिल्कुल
0: संस्थाएं,
1: जी
0: उनको
1: जी
0: भी बाजाबता कहा गया कि आप भी रजिस्टर हो, उसके बाद सेवा आप कर सकते हैं श्रद्धालुओं की। तो ये सिर्फ सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम थे, और उसमें दिशा निर्देश में जैसे मैंने कहा कि यात्रा मार्ग का जो ये है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर तत्काल मलबा उठाने, तत्काल उसको ठीक करने के जो दिशा निर्देश दिए गए उसमें कर्मचारी अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे थे, और तभी ये मुमकिन हो पाया। कल मौसम ठीक हुआ, कल ही ऐलान भी हुआ कि ये बाजाबता जो तीर्थ यात्रा है ये यहाँ से फिर से रवाना होगी, और ये सबसे बड़ी खुशी की खबर थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जावेद मेहराब साहब, ये बहुत ही खुशी की खबर है, और वो उत्साह तो हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के भी महसूस कर पा रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे जो जम्मू के संवाददाता हैं जावेद मेहराब साहब, जो बहुत ही जो खुशायंद तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे कि तकरीबन 600 से जायद जो है यात्रियों पर मबनी काफिला जो है वो सुबह सवेरे जो है वो यात्रा के हवाले से यात्रा के लिए निकल पड़ा है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, और सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz पर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। हमारे साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी, जो कि हम अपने मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता हैं उनसे इस वक्त जो है मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जम्मू के बाद हमारे रामबन के जो संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मोहम्मद तस्कीन साहब से हम जो है वहाँ की तफसीलात मालूम करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद तस्कीन साहब, आपका इस विशेष प्रसारण में स्वागत है।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: जी मोहम्मद तस्कीन साहब, क्या सूरत हाल है, जो कि 6 दिनों के बाद जो है यात्रा को फिर से अनुमति मिली है, तो क्या कुछ उत्साह जो है, जोश जो है वो यात्रियों में नजर आ रहा है?
1: जी शुक्रिया। बिल्कुल, अब 6 रोज बाद यानी 19 तारीख को श्री अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई थी मौसमी खराबी की वजह से, और देखा भी आपने कि कितनी बारिशें हुई, हाईवे बंद रहा करीब 3 दिन तक। तो उसके बाद कल जब मौसम में बेहतरी आई, तो उसके बाद कल शाम को हुकाम ने फैसला ले लिया कि आज सुबह से यात्रा फिर रिज्यूम की जाएगी, और आज सुबह यात्रा को जम्मू से सिर्फ एक ही मार्ग से आज यात्रा जाएगी, सिर्फ बालतल के मार्ग से, क्योंकि पहलगाम वाला जो है अभी उसमें क्लियरेंस नहीं है वेदर की वजह से।

0: उसमें खराबी की वजह से। तो आज 223 गाड़ियों का एक काफला जो अभी बनिहाल पहुंच रहा है, पहुंच चुका है, और इसमें 6,269 यात्री सवार हैं, और आज सुबह करीबन 3 बजे इन्हें जम्मू से भगवती नगर से रवाना किया गया। कुल मिलाकर जो यात्री जो हैं वो पहले से ही जो यहाँ पर ठहरे हुए थे हमारे इस क्षेत्र में, जैसे रामबन के यात्रा निवास में कहेंगे, उसके बाद बनिहाल के यहाँ लंगर में पर कहेंगे लांबर लंगर ग्राउंड पर, तो बहुत जज्बा था इनमें, जोश था, इंतजार कर रहे थे कि कब हमें क्लियरेंस मिल जाती है, और मिलाकर वो क्लियरेंस मिल गई आज, और खुशी का माहौल तो जाहिर है। जो 5-6 रोज से इंतजार कर रहे थे कि कब वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए जाएंगे, कब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और मिलाकर वो ग्रीन सिग्नल कल रात को उनको दिया गया और आज सुबह ये रवाना किए गए। आज सुबह जो यात्रा यहाँ जब रामबन पहुंची, चंद्रकूट पहुंची, तो वहां पर जो यहाँ पर हमारे जो हुक्काम है, डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अली आस खान है, एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता है, उसके बाद ट्रैफिक एसएसपी राजा आदिल हमीद है, उसके बाद एडीसी साहब है, बाकी अफसरान है जो बिल्कुल इंतजार में थे, और इन्होंने इनका वेलकम किया वहां पर जो रिज्यूम हुई आज यात्रा। तो उसके बाद जो डीसी रामबन अली आस खान साहब है और एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता साहब है, वो यात्रा के साथ ही वो आए हैं बनिहाल तक, ताकि बनिहाल लांबर ग्राउंड तक इनके साथ आ रहे हैं, और यात्रा का जो टेल अभी पहुंचा चाहता है यहाँ बनिहाल ग्राउंड में, गुजर रही है सुबह बनिहाल टाउन से, श्री अमरनाथ यात्रा जो बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ जाएगी। तो ये यहाँ पर यानी डिप्टी कमिश्नर का और एसएसपी का भी साथ होना, ये इस बात का कि ये जो ओवरऑल जो अरेंजमेंट्स है, जो उनका जो उधर लंगर लांबर लंगर ग्राउंड में या चंद्रकूट में है, तो उनका ओवरऑल एक जायजा लेने के लिए भी और यात्रियों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मजमूई तौर पर जो मौसम आज रात से ही बिल्कुल बेहतर होना शुरू हुआ है, और इस वक्त अगर बादल हैं पूरे इस रामबन बनिहाल सेक्टर में छाए हुए हैं, लेकिन बारिशों का भी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है, और यात्रा जो है बिल्कुल जो यात्री जो है खुशअसूबी के साथ है, और सिक्योरिटी जो चाको चौबंद है पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
1: जी जी, अगर हम नेशनल मार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, जो कि बहुत लैंडस्लाइड्स की बहुत बातें हो रही थी, तो क्या सूरत हाल है, क्या उसको बिल्कुल सुरक्षित करार दिया गया है अब यात्रियों के हवाले लिए?
0: अगर लैंडस्लाइडिंग की बात करें तो रामबन और उधमपुर के क्षेत्र में करीबन एक दर्जन मुकाम जो थे वो स्लाइडिंग और इसमें पत्थरों की जद में आए थे, शूटिंग स्टोन्स की जद में आए थे, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि कोई ज्यादा डैमेज हाईवे को नहीं हुआ था, और जब कल जब मौसम में बेहतरी आई तो उसके फौरन बाद जो है वो कल दोपहर जब 1 बजे करीबन फ्राइडे को, कल जब 1 बजे के बाद मौसम बेहतर शुरू हुआ, तो एकदम जो मशीनरी पहले ही काम कर रही थी बारिशों के बावजूद, ट्रैफिक हुक्काम नजर रखे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन नजर रखी हुई थी ताकि रेस्टोरेशन जल्द अज जल्द मुमकिन हो, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियां जम्मू और श्रीनगर में रुकी पड़ी थी, उसके अलावा जो यात्रा का मसला था, यात्रा को रिज्यूम करना था, तो जैसे ही कल ये इनको मौका मिला, मौसम ठीक हुआ, तो उसके बाद फौरन काम शुरू किया गया, और कल शाम करीबन 6:30 बजे तक इसको पार्शल रेस्टोर किया गया था, और जो स्ट्रेंडेड पैसेंजर्स थे रामबन बनिहाल में काजीगुंड में, उनको कल ही क्लियर किया गया था, और आज सुबह से जो है ये जो यात्रा छोड़ी गई, तो इसके बाद जो अब बाकी ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा 7 बजे से, जम्मू से जो एलएमवीज है उनको कश्मीर की तरफ आने की इजाजत दी गई है, वो बढ़ रहा है इस वक्त ट्रैफिक, उनको दिन के 12 बजे तक, 7 से 12 बजे तक नगरोटा से निकलना है, इसी तरह उनको उधमपुर से 8 से 1 बजे तक क्रॉस करना है कश्मीर की तरफ, इसी तरह कश्मीर से जो ट्रैफिक इंतजार कर रहा है जम्मू की तरफ, पिछले 5-4 दिन से वेट कर रहे हैं जो मुसाफिर गाड़ियां है टूरिस्ट से, क्योंकि रेल भी कल यूज की गई थी, रेल का भी इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, तो उसमें रेल के भी जरिए कल 1500 से जायद लोग कटरा पहुंचे कश्मीर से, श्रीनगर से जो दरबंदा लोग थे जो पैसेंजर थे, उसमें यात्री भी बहुत ज्यादा तादाद में थे, वो जम्मू पहुंच गए। तो इसी तरह जो आज का जो यात्रा का मजमूई तौर पर अब ये जो यात्रा निकालने के बाद 11:30 बजे से जो एलएमवीज है जो काजीगुंड में रोकी गई है, उन्हें 11:30 बजे से 5:30 बजे के वक्त के मतलब शाम 5:30 बजे तक कश्मीर से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, 11:30 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक उनको चलने की इजाजत होगी, और जो बाकी ट्रक्स का है ऑयल ट्रक्स को एक तरफा तौर चलाया जाता है यात्रा के दौरान, और ट्रकों को जो माल बरदार ट्रक है या ईंधन बरदार जो टैंकर्स वगैरह है तो वो कश्मीर की तरफ आएंगे।

0: इजाजत दी जाएगी एक तरफा तौर, लेकिन उन्हें सिर्फ एक तरफ से यानी जम्मू से कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। अलबत्ता जो पैसेंजर ट्रैफिक है दोनों तरफ से रिलीज किया जाएगा। 7 बजे से जम्मू से शुरू किया गया है, 11:30 बजे बाद काजीगुंड के मतलब टनल से काजीगुंड टनल से इन्हें जम्मू की तरफ छोड़ा जाएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्कीन साहब हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी श्रोताओं, ये थे हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, समाचार का वक्त हो रहा है, ये समाचार सुनते हैं।
1: ये समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं,

0: हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

0: पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोट्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. it said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to

0: जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने पहले सफे पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मुसवदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आज की जो सुबह है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक नई आशा, नए उत्साह और नई उम्मीद का संदेश लेकर आई है, क्योंकि 6 दिनों तक जो है मौसम में खराबी के कारण निलंबित रहने वाली यात्रा जो है उसको फिर से शुरू किया गया है। जो ये जो खबर है ये ना सिर्फ हजारों यात्रियों के लिए एक खुशी का बायस है बल्कि उन सब की धीरज और श्रद्धा की भी जीत है जिन्होंने पूरे सब्र के साथ इस पल का इंतजार किया। लेकिन आपको बताते चले कि फिलहाल जो है सिर्फ बालतल मार्ग से ही यात्रा की अनुमति मिली है, जबकि जो पहलगाम का मार्ग है वो अभी भी जो है वहां से जाने की अभी भी किसी यात्री को अनुमति नहीं मिली है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, और जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचना हम तक पहुंचती है हम तुरंत जो है लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और लगातार जो है हम अपने संवाददातों से भी, संवाददाता जो हमारे मुख्तलिफ क्षेत्रों में है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष प्रसारण। इस बीच हमारे साथ जो है अनंतनाग के संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अस्तारिक साहब। तो अस्तारिक साहब जो है उनसे तफसीला जानने की कोशिश करेंगे। अस्तारिक साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी, इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को भी मेरा शुभ प्रभात। आज 25 जुलाई है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का 30वां दिन है। पहलगाम के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पर खुशगवार मौसम के बीच 6 दिन के वर्म के बाद आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का पुण्य शुभारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिगड़ते हुए मौसम और यात्रा मार्ग पर जो प्रशस्ति को देखी हुई थी कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा को मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा को 6 दिन के लिए आरजी रूप से मुअत्तल रखा गया था। अब मौसम में सुधार आने से और यात्रा मार्ग के पूरे तरह से सुरक्षित करा दिए जाने के बाद यात्रा का पुण्य संचालन आरंभित हो गया है। आस्था और श्रद्धा से उत्साह इस पवित्र यात्रा में आज सुबह 3:30 बजे नुनवन आधार शिविर से रवाना होने के बाद हजारों यात्री 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी पहुंच चुके हैं। चंदनवारी में पंजीकरण की कार्रवाई के बाद श्रद्धालु पिशुटा, जोजबल, नागाकोटी से होते हुए शिशनाग और पंचतरणी के ओर अपनी पद यात्रा निरंतर जारी रखे हुए हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 223 छोटी बड़ी वाहनों में 6,269 यात्रियों पर मुश्तमिल एक नया जत्था घाटी के ओर रवाना हो चुका है। ये जत्था दोपहर तकरीबन 12 बजे काजीकुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचेगा, जहां से बालतल के लिए रवाना किया जाएगा, जिसमें 4,720 पुरुष, 1,458 महिला, 25 बालका, 54 साधु और 12 साध्वी शामिल है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए फिलहाल आज कोई भी जो जम्मू से कोई भी यात्री रवाना नहीं किया गया। 4.25 लाख श्रद्धालु पहले ही बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। यात्रा का ये पवित्र क्रम जारी है। इस समय पहलगाम के आसपास के क्षेत्र और यात्रा मार्ग पर मिला जुला मौसम बना हुआ है और वातावरण सुखद है। दिन में हल्की सी बारिश होने की पेशगोई भी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त पहलगाम से पवित्र गुफा तक कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन के समय अधिकतम दर्जे हरारत 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। रात्रि जो न्यूनतम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। इस वक्त वातावरण में नमी की मात्र 64 डिग्री दर्ज है। यात्रा प्रशासन के ओर से श्रद्धालु के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखी गई है। सुरक्षा के दृष्टि से नवयोग टनल काजीकुंड से लेकर पहलगाम तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी पवित्र यात्रा
0: एस तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि 6 दिनों के बाद जो है ये यात्रा फिर से शुरू हो रही है, तो कैसा उत्साह जो है, कैसा जोश जो है अनंतनाग के बेस कैंप में देखा जा रहा है यात्रियों में?
1: बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल जो काफी 6 दिन तक वो वहाँ कायम रहे, वहाँ बिल्कुल रहे, उनकी जो खर्चात भी थे, उनके जो थकान भी था और उनकी जो उत्साह भी था, वो सब जब एक साथ सुबह जब रात को ही ऐलान हुआ था, रात देर गए उनको ऐलान हुआ था कि कल आपने सफर पे जाना है, आपने बाबा के द्वार जाना है, तो उसमें उनमें बहुत ज्यादा उत्साह थी और शोर शराबा खड़ा हो गया है, ऐसे कि किसी महफिल में किसी मजलिस में जाने के लिए वो उत्साह थे। तो बिल्कुल वो उत्साह के उसी शोरगुल में वो खड़े हो गए, भोजन किया, उसके बाद पूजन की और बहुत सारे धार्मिक जो भी उनकी जो पूजा पाठ होते हैं वो किए और खुश हुए। और सुबह खुशी खुशी 3:30 बजे वो निकले बाबा के जो नारे दे दे कर, तो सारा जो चित्र था गूंज उठा था उनके बाबा के नारों से, जय जयकार के नारों से। तो इस समय वो बिल्कुल उन्होंने तकरीबन 12 बजे तक उनका जो है पूरा चंदनवारी में जो द्वार है 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, वहां से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की है। कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्री जो बात दिखानी पड़ती है या बाकी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खुशी के साथ।
0: जी जी, एस तारिक साहब, अगर हम मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो क्या कुछ भविष्यवाणी जो है अभी कुछ ताजा कोई नई भविष्यवाणी वो मत सामने आई है?
1: बिल्कुल, जो आज की सुबह की भविष्यवाणी है कि दिन में थोड़ा सा जो दक्षिणी कश्मीर में थोड़ी सी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उतनी बारिश उसमें उसके लिए काफी नहीं है कि इस काफिले को रोक सके। तो चूंकि ये पूरा ही जो सफर है ना, सबसे ज्यादा जो निर्भर रहता है वो मौकमा मौसमियात मौसमियात विभाग पे रहता है। जब तक वो क्लियरेंस नहीं देते हैं, उसके बाद बीआरओ जो होते हैं इस मार्ग में, बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, पुलिस होती है, जो विभाग होते हैं, जो जब तक क्लियरेंस नहीं देते हैं तब तक किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। इसलिए ये तय है कि इस वक्त हमारा जो ट्रैक है, यात्रा ट्रैक है, वो मार्ग बिल्कुल सेफ है, तो उसमें फिसलन नहीं है इस वक्त। और बड़े जो प्रशासन है बिल्कुल वो इंटैक्ट है, वहाँ हर जगह पे है स्वस्थ मार्ग, बिल्कुल इंटैक्ट है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हर जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे गए हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, पैरामेडिकल स्टाफ खड़ा है, जम्मू कश्मीर पुलिस हेल्प के लिए खड़ा है, क्योंकि इतने दिनों हमने जब देखा है कि इस यात्रा में पुलिस ने किस किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी उन्होंने यात्रियों को अपने कंधों पे उठाया, उनके जो साजो सामान था वो अपने कंधों पे उठाया और उनकी व्यवस्था की है। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त एक फैमिली की तरह चल रहा है, एक बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ चल रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होते हुए जिसको पूरे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस मॉनिटर के बाद ही इन चीजों को इजाजत दी जाती है। तो मौसम इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्की सी बारिश हो सकती है जिसकी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन वो बारिश बहुत हल्की होगी,
0: खुशगवार होगी,
1: उनके सफर में शायद उनको मजीद उनको उसमें मजा आएगा।
0: जी जी जी, तायस तारिक साहब, चूंकि 6 दिनों के बाद यात्रा जो है फिर से शुरू हो चुके, तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम होगा आपका यात्रियों के लिए, जो क्योंकि अब टेम्परेचर की अगर बात करें, पहले तो बहुत गर्मी थी लेकिन अब उसमें बहुत जो है कमी आ चुकी है, तो क्या पैगाम रहेगा सभी यात्रियों के लिए?
1: देखिए मैं आपको बता दूं, जैसी सरकार जो प्रशासन ने पहले ही ऐलान किया था कि हमने मौसम के मुताबिक यात्रा को निलंबित रखा है, तय हुआ है कि मौसम खराब होना था
0: जी।
1: और ये हम इस पे भी बहुत शुक्रगुजार है मौकम मौसमियात के, ये जो वेदर जो हमारे एक्सपर्ट है वो जिन्होंने ये कबल अज वक्त बताया था कि मौसम खराब होने वाला था, और इसमें इस फैसले ने फिर ये करके दिखाया कि हमने वसी तर हिफाजत के लिए यात्रियों को रोका था, इस यात्रा को रोका था, और आज मौसम बेहतर हुआ, फिर सफर शुरू हो गया है, फिर जश्न सा माहौल फिर शुरू हो गया है। और ये जो हमारे बाकी यात्री है उनको जी आना जी। चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल मौसम है, इस मौसम में सबसे ज्यादा ये मजा है कि गर्मी का जो तमाजत थी वो खत्म हो गई है,
0: हीट वेव थी
1: के लिए चंद दिनों के लिए, लगभग फर्स्ट तक के लिए ये अभी मौसम बिल्कुल साजगार रहेगा, बिल्कुल नरम रहेगा, जिसमें सफर आसान हो सकता है। और आप आइए, आपके लिए बाबा बिल्कुल बाबा के द्वार खुले हैं, और यहाँ आके अपनी जो श्रद्धा है वो, अपनी जो आपकी जो दिल की चाहत है वो हम निकालें।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया एस तारिक साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ एस तारिक साहब, जो अनंतनाग से हमारे साथ अभी जुड़े थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा डीटीएच के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आज की इस विशेष प्रसारण में मैं हूँ, 12:30 तक रहूंगी मैं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। तो श्रोताओ, इसी बीच जो है एक और जो है शायद खबर हम तक, एक सूचना हम तक पहुंची है, वो ये है कि जो है यात्रा को दोनों रूट से है वो अनुमति दी गई है। इस बीच हम डिविजनल कमिश्नर साहब का ये बाइट भी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें वो इस हवाले से जो है सूचना फराहम कर रहे हैं।
1: बारिश के हालात के चलते हुए ट्रैक की क्या स्थिति है उसको देखते हुए ही बोर्ड द्वारा ये फैसला किया जाता है कि यात्रा कैसे रिज्यूम करें। तो कल शाम को जब ये सारी चीजों को रिव्यू किया गया बीआरओ की टीम के साथ, आईएमडी की टीम के साथ, तो ये फैसला लिया गया कि जो भी दोनों बेस कैंप्स पे यात्री हैं उनको दर्शन के लिए रवाना किया जाए। तो आज सुबह यात्रा जो है दोनों बेस कैंप्स नूनवान और बालटाल दोनों तरफ से जो है यात्री अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए ऊपर बढ़े हैं, और लगातार से हमारा रहता है सिस्टम में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कैंप डायरेक्टर्स के थ्रू वो बरकरार है, और जम्मू से भी जो है आज कॉन्वॉय जो है श्रीनगर की तरफ बढ़ा है। कुल मिलाकर के जो कल तक का आंकड़ा था वो 391,000 था, तो 391,000 जब से 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है।
0: जी श्रोताओं, तो ये थे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब जो ये मालूमात हम तक पहुंचा रहे थे कि जो यात्रा है ये अब दोनों मार्गों से जो है उसे अनुमति मिल गई है। इस बीच जो हमारा आज का पहला दर्शन रिपोर्ट जो है वो भी आन पहुंचा है, तो इसके मुताबिक, इसके अनुसार जो है अभी तक 290 यात्रियों ने जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं, जिनमें 158 पुरुष, 100 महिलाएं, 3 बालक और 29 जो है हमारे जो है सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। हम इसी बीच जो है, हमने अपने संवाददाता जो हमारे श्रीनगर के हैं इमरान नायकू साहब, उनसे राबिता हुआ है हमारा और वो इस वक्त लाइन पे मौजूद है। श्रोताओं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर जो है यहाँ पर क्या स्थिति है यात्रा के हवाले से। इमरान नायकू साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: जी इमरान साहब, तो क्या, जो कि 6 दिनों के बाद जो है अब यात्रा को फिर से अनुमति मिली है, तो क्या उत्साह पाया जा रहा है श्रीनगर में अगर देखें, और श्रीनगर में मौसम इस वक्त कैसा है?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है कि 6 दिन के बाद अमरनाथ जी यात्रा दोबारा से रिज्यूम हुई है और आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,000 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री जो है वो अमरनाथ जी यात्रा के लिए कश्मीर रवाना हुए हैं। और श्रीनगर का जहां तक ताल्लुक है, जैसे कि पिछले कई दिनों से हम इस पर अपडेट कर रहे थे कि खराब मौसम की वजह से यात्रा जो सस्पेंड हुई है, कहीं ना कहीं यात्रियों में काफी मायूसी है, लेकिन आज उस वक्त खुशी की लहर यात्रियों में दौड़ गई जब वो उन्हें ये सरकार की तरफ से अपडेट मिला कि वो यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। और यहाँ जो यात्री रुके थे उन्हें बालतल बेस कैंप की तरफ आज सुबह रवाना किया गया है, नुनवन बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया है जो कि सोनमार्ग का जो रास्ता है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रियों के लिए जहां श्रीनगर में इंतजाम या अरेंजमेंट या जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं बिल्कुल बेहतर से बेहतर रखी गई है, वहीं आज मौसम की बात करें तो सुबह से ही मौसम बिल्कुल साजगार है, मौसम बिल्कुल सुहाना है और धूप इस वक्त निकली हुई है। और मौसम विभाग ने भी यही प्रोजेक्शन की है कि तो मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि मौसम बेहतर हो और जो यात्री यात्रा के लिए रवाना हुए हैं वो सही तरीके से और अच्छी तरीके से यात्रा कर पाए।
0: इमरान साहब, अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि जो ये यात्रा है, अब चूंकि पहले जो है ये इसको सिर्फ एक ही जो मार्ग है वहां से अनुमति मिली थी जाने की, तो अब अभी अभी सूचना जो हमें मिली है उसके मुताबिक जो है पहलगाम का मार्ग भी खोल दिया गया है, तो इस हवाले से हमारे श्रोताओं को जो है वो जानकारी दीजिए।
1: बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि पहले तो सुबह प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ जो हमारा बालतल का जो रूट है वहां से अमरनाथ जी यात्री रवाना हो सकते हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब पहलगाम का जो रास्ता है वहां से भी यात्रियों को इजाजत मिलेगी। और चूंकि मौसम अब बेहतर हो रहा है, साफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन की कोशिश यही है कि अमरनाथ जी यात्रियों को के लिए दोनों जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाए और दोनों रास्तों से उन्हें जाने की इजाजत दे। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो भी यात्रियों की बेहतरी के लिए ही कोई भी कदम उठाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से बारिशें हुई और जो मौसम की सूरत हाल बनी उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा जो नुकसान है वो जो पहलगाम का जो रास्ता है वहां से हुआ। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो जो यात्रा में जो गुफा के जो ट्रैक्स है वो महफूज है और उनको देखते हुए अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अमरनाथ जी यात्रियों को यात्रा का जो पवित्र गुफा है वहां तक जाने की इजाजत मिलेगी।
0: जी, तो अगर हम यात्रियों की बात करें, कैसा महसूस कर, चूंकि आपने भी बहुत से यात्रियों से बात भी की होगी, उनसे आप राबते में होंगे। जी
1: बिल्कुल, जैसे मैं कह चुका हूँ कि जहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैब में जो अमरनाथ जी यात्री पिछले कई दिनों से रुके थे और सब चीजों को लेके वो खुश थे और खुशी से आए थे यात्रा के लिए, लेकिन जो मौसम ने पाल किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मायूस थे, लेकिन अब खुशी है कि मौसम भी ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है, धूप भी खिली है और सबसे अच्छी खबर यह है कि मौसम साफ होते ही प्रशासन ने फैसला लिया है कि यात्रियों को वहां पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 6,000 से ज्यादा अमरनाथ यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की तरफ रवाना किए गए हैं और यहाँ श्रीनगर से भी यात्रियों को जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है, अरेंजमेंट्स और जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी इंश्योर है यात्रियों के लिए। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यात्रियों के लिए खुशी की बात यह है कि आज दोबारा से वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए जाएंगे।
0: जी इमरान साहब, हम श्रीनगर के हवाले से भी जानना चाहेंगे, यहाँ जो जहलम वगैरह है तो उनकी क्या स्थिति है?
1: देखिए पिछले कई

0: से जो बारिशें हो रही थी बहुत सारी जगहों पर, हमने देखा कि पानी की जो या जो वाटर की जो लेवल है वो काफी बढ़ रही थी, लेकिन कंटिन्यूअसली जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो इरीगेशन खरीद कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उनकी जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर डिप्यूट की गई थी। और कल भी हमने देखा कि ऑफिशियल ने जहां जहां जरूरत पड़ी तो वहां उन्होंने मुआयना भी किया, विजिट भी किया। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि वाटर की जो लेवल है वो डेंजर जोन से बिल्कुल कम है और मौसम भी अब ठीक हुआ है, और इसलिए लोगों को भी अभी इस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी दी है कि जो जो फ्लड प्रोन इलाके हैं या जो जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा है, जब तक मौसम बेहतर हो या दरियाओं के नजदीक अननेसेसरली ना जाए, ताकि जब तक वाटर की लेवल है और ज्यादा कम हो जाए। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कल दोपहर से ही जो दरियाए जहलम की वाटर लेवल है वो काफी कम दिखती हुई नजर आ रही है।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू साहब, जो हमें श्रीनगर के हवाले से जो है वो जानकारी दे रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, समाचार का वक्त हो रहा है, ये समाचार सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लालपोरा, बीरवा, बड़गाम का दौरा करके जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के घर जाकर उनके लवाकीन के साथ तजियत और यकजहती का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस एहलकार को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि पूरी कौम को उनकी बहादुरी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुतासर कुंबे के साथ शाना बशाना खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एक वफूद ने सीनियर नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने जम्मू कश्मीर में स्काउट्स एंड गाइड्स तहरीक को मजीद मुस्तकम बनाने के लिए अलहदा तरबती मरकज के कयाम, माली मामलत में इजाफा और इसे खेलों के जुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया। इस बीच बीजेपी लीडर और जिला कुलगाम के साबिक पार्टी सदर जुबैर गनाई ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके आवामी अहमियत के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दरियासना बीजेपी यूथ सदर बारामूला शफकत अब्दुल्ला की कयादत में एक वफद ने भी एलजी से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मामलात एलजी की दानिस्त में लाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में मुनक़द होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर IFFJ के फिल्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के दरमियान नई शराकतदारी का आगाज होगा। वजीर आला ने कल श्रीनगर में IFFJK के इनेकाद से पहले मुनक़द तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल मुनक़द करने से वादी के बासलाहित नौजवान फनकारों के लिए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म साजों के लिए मौजूद पॉलिसी तरतीब देने पर संजीदगी से काम कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इम्तहानी अमल में शफाफियत लाने के लिए एक इस्लाही कदम के तौर 47 अहलकारों को बरतरफ किया है। इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी काबिना ने पेपर लीक मामलात और इम्तहानी अमल में लापरवाही की सूरत में कसूरवारों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने के मुसवदे को मंजूरी दी है। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरी में अवामी शिकायत पर मबनी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ वफूद और अफराद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वफूद ने बुनियादी ढांचे, देही तरक्की, ज़राअत, रोजगार और अवामी बहबूद से मुतलिक मामलात उठाए। वजीर ने मुतलिक अफसरान को शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत देते हुए कहा कि हुकूमत अवामी खिदमात की मौसर फराहमी और सरकारी स्कीमों के फवायद मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 6 रोज की मुअत्तली के बाद आज दोबारा बहाल हो गई। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटू ने इतला दी है कि मौसम में बेहतरी और शहरा पर ट्रैफिक बहाल होने के बाद आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 6,269 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। यात्रा की बहाली से मुतलिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: बारिश के हालात के चलते हुए ट्रैक की क्या स्थिति है उसको देखते हुए ही बोर्ड द्वारा ये फैसला किया जाता है कि यात्रा कैसे रिज्यूम करें। तो कल शाम को जब ये सारी चीजों को रिव्यू किया गया BRO की टीम के साथ, IMD की टीम के साथ, तो ये फैसला लिया गया कि जो भी दोनों बेस कैंप्स पे यात्री हैं उनको दर्शन के लिए रवाना किया जाए। तो आज सुबह यात्रा जो है

0: दोनों बेस कैंप्स नूनवान और बालटाल दोनों तरफ से जो है यात्री अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए ऊपर खड़े हैं। और लगातार जैसे हमारा रहता है सिस्टम में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कैंप डायरेक्टर्स के थ्रू वो बरकरार है। और जम्मू से भी जो है आज कॉन्वॉय जो है श्रीनगर की तरफ बढ़ा है। कुल मिलाकर के जो कल तक का आंकड़ा था वो 3,91,000 था, तो 3,91,000 जब से 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है।
1: इधर आज सुबह 8 बजे तक मजीद 290 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। वाजर है खराब मौसम, शदीद बारिश और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहने के बाइस यात्रा 19 जुलाई को आरजी तौर पर रोक दी गई थी। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कल से इंडस फूड अहमदाबाद 2026 फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 रोजा इस फूड फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यूटी के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे की सरपरस्त में शिरकत कर रही है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सनतकारों, बाग मालिकान और किसानों ने जम्मू कश्मीर में तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा है। इस फेस्टिवल का अहतमाम ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के लिए जाबतों के तहत तकरीर अमल में लाने के लिए सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी है। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक महकमा सेहत व तिबी तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जे एंड के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू के सोब नफसियात के सरबराहान कमेटी के मेम्बरान होंगे। कमेटी को इस हवाले से मौसूल हुई तमाम दरखास्तों का जायजा लेने का काम तफवीज किया गया है। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: श्रोताओ आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवा। अज्ञानेन अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी

ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योनः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो योनः प्रचोदयात की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है, परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें, तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं, आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः, अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा, इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति चेतनावस्था सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान, दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें, तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं, तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना

और मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए, इसके पश्चात मौन की शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें, तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है, जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। हमारे साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, गुज़िश्ता 6 दिनों में हजारों यात्रियों ने एक ही बात का सबूत दिया है कि श्रद्धा के साथ अगर धीरज भी हो तो हर कठिनाई जो है वो आसान लगने लगती है। मौसम की वजह से यात्रा अगर निलंबित रही, लेकिन किसी की आस, किसी का विश्वास और बाबा बर्फानी के दर्शन की जो इच्छा है वो कम नहीं हुई। आज जब यात्रा दोबारा शुरू हो रही है तो ये सिर्फ एक रास्ते के खुलने की खबर नहीं, बल्कि उम्मीद की दोबारा जागने का जो संदेश है। इसी बीच आपको इंतजार होगा हमारे जो गांधरबल के संवाददाता है उनसे जानकारी हासिल करने की, तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो गांधरबल के संवाददाता है रहीम रिजवान साहब। तो सबसे पहले इनसे जो है जानकारी हासिल करते हैं। रहीम रिजवान साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: धन्यवाद आपका भी।
0: जी रहीम रिजवान साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि मौसम की क्या सूरत हाल है गांधरबल में।
1: बालतल मुख्य मार्ग से या गांधरबल जिले में मौसम की किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो हम जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। तो श्रोताओं, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से लगातार 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज दोबारा बहाल कर दी गई। ये खुशखबरी हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि घाटी में खराब मौसम के कारण प्रशासन ने 19 जुलाई को उस वक्त यात्रियों की सुरक्षा के लिए तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया, जब मौसम विभाग ने घाटी में भारी वर्षा होने की भविष्यवाणी की। इस तरह अवश्य मौसम विभाग के अनुसार घाटी में लगातार भारी वर्षा होती रही, बल्कि आज भी यहां वर्षा हो रही है। ताहम 4 रोज यात्रा स्थायी रूप से निलंबित करने के बाद आज सुबह सवेरे बालतल मुख्य मार्ग से तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान प्रशासन ने बालतल बेस कैंप में बीती शाम यात्रियों को यह सूचना दी कि वह 3 बजे रात दुमिल कंट्रोल गेट पर रिपोर्ट करें तथा 4 बजे उन्हें गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों का पालन करते हुए यात्री ठीक 3 बजे बालतल बेस कैंप से दुमिल पहुंचे, जहां आज 25 जुलाई 2024 सरकारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक 3,633 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया।
0: जी,
1: पैदल डांडी एवं गोडू पर सवार होकर गुफा जाने वाले इन तीर्थ यात्रियों में 2,362 पुरुष, 1,090

0: महिलाएं, 33 बालक बालिका एवं 148 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। बम बम बोले तथा जय बाबा बर्फानी भूखे को भोजन प्यासे को पानी का पवित्र नाद करते हुए ये श्रद्धालु जोश जज्बे के साथ दर्शन के लिए गुफा रवाना हुए। बताओ अगर हम मौसम के बारे में बात करेंगे तो आज भी बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है। आकाश पर घने बादल छाए हुए हैं जबकि हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है। लिहाजा यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण है
1: जी,
0: क्योंकि बालतल से पवित्र गुफा तक जो ऊंचे पर्वतों के बीच आपको 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ता है, या मौसम की खराबी से आपको कभी कभार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इस दौरान रेनकोट, लाठी, RFID कार्ड, गर्म कपड़े, पानी की बोतलें एवं अन्य जरूरी सामान साथ रखना न भूलें तथा प्रशासन के साथ कोऑपरेट किया करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्र सफर संयम एवं धीरज से करें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सहायता के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITBP, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, RCC 122 के अधिकारी, NDRF, SDRF, वॉलंटियर्स के अलावा जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारी चाको चौबंद रखे गए हैं। हत्या कि प्रशासन ने तमाम ट्रांजिट कैंपों, जिनमें ट्रांजिट कम शादीपुरा और ट्रांजिट कम मनीगाम भी शामिल है, बेस कैंपों के साथ साथ ब्राडी मार्ग, काली मथा, संगम टॉप, लवर टॉप के अलावा अपर केव तक यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन, पानी, बिजली, रात्रि विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग तथा चिकित्सा व्यवस्थाएं शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े एवं उनकी तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा बिना किसी बाधा के सफल हो जाए। जी
1: रहीम साहब, हमें बताइए कि क्या उत्साह देखने को मिल रहा है जो वापस दर्शन करके लौट रहे हैं यात्री, कहीं उनको कोई रास्ते में टेम्परेचर की वजह से कोई कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है?
0: देखिए गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान जो कोई भी यात्री वहां से दर्शन करके वापस नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो भी यात्री आए उन्हें काफी उत्साह पाई जाती थी एवं शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचे। तो अगर व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो उनमें ऑलरेडी उत्साह थी और व्यवस्थाओं को लेकर भी वो संतुष्ट थे।
1: जी, अगर हम बालतल एरिया की बात करें तो मौसम विज्ञान जो है उनकी क्या भविष्यवाणी है उस एरिया के हवाले से, क्या जो कि अभी अगर हमें जो सूचना मिली है अभी अनंतनाग में जो है बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, तो वहाँ के हवाले से क्या सूरत हाल है?
0: ये जो बालतल आ गया ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो भी मौसम विभाग के अनुसार भविष्यवाणी की जाती है उस पर यहाँ ज्यादा असर नहीं रहता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि यहाँ हर रोज बीच में हल्की हल्की वर्षा भी होती है और मौसम बिल्कुल खुशगवार भी कभी कभार रहता है। लेकिन आज सुबह सवेरे अगर नुनवन बेस कैंप पहलगाम की तरफ से वर्षा हो रही थी तो बालतल में भी वर्षा हो रही है। बाजार का तोरा सुबह सवेरे से हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, तो इस वक्त आकाश में बादल छाए हुए हैं, ऐसी संभावना, बारिशों की संभावना जो है, वर्षा की संभावना मुकम्मल तौर बनी हुई है, लेकिन ऐसे ही सूरत में मौसम खुशगवार भी है और यात्री काफी उत्साह में थे। तो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह जो यात्रा ट्रैक है वो आज बिल्कुल ठीक है, तो यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी, तो यात्रियों को आज गुफा की ओर रवाना कर दिया गया।
1: जी रहीम रिजवान साहब, हमारी भी यही प्रार्थना है कि हमारे जो सभी यात्री हैं, हमारे जो मेहमान हैं, इनका जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। आपने हम तक ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंचाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
0: आपका
1: जी श्रोता, वो ये थे हमारे जो गांदरबल के संवाददाता है रहीम रिजवान साहब, जो बालतल मार्ग के हवाले से जो वहाँ एरिया है वहाँ के हवाले से हमें सूरत हाल जो है आगाह कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम तक कोई भी जो है महत्वपूर्ण सूचना पहुंचती है तो हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। इस बीच हमारे जो रामबन के संवाददाता है तस्कीन साहब, उन्होंने ये जो है इतला दी है, सूचना दी है कि रामबन में इस वक्त जो है फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। चूंकि जहाँ जो यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग जो है उन्होंने भी जो है अभी अभी जो है भविष्यवाणी जो उनकी तरफ से सामने आई है उसके अनुसार आज जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है हल्के से बारिश का इम्कान है, जबकि कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पर तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बारिश के पेश नज़र जो है पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स और जो फ्लश फ्लड्स हैं उनका खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। इसलिए जो भी हमारे यात्री हैं, हमारे मेहमान हैं, तमाम यात्रियों और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के मकामी बाशिंदे जो है लोकल्स जो हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं, यहाँ के अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी हिदायत पर अमल करें और जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे जो है वो गुरेज करें। ताहम ये भी एक अच्छी खबर सामने आई है कि आज दोपहर के बाद जो है मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है और शाम तक जो है बेशतर इलाकों में बारिश थम सकती है। एहतियात लाजमी है सबके लिए, क्योंकि जीवन जब हमारा सुरक्षित होगा तो तब जाके जो है हम हमारी जो यात्रा जो है उस तक भी हमारे जो दर्शन है वो भी मुकम्मल हो सकते हैं बाबा बर्फानी के। इसलिए अपना ख्याल रखिए और अपने जो प्रियजन हैं उनका भी ख्याल रखिए। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को

0: यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स नेवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अगर आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता दरकार हो तो नजदीकी सेवा केंद्र पुलिस या श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करें या फिर हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, 9596990954। या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। श्रीनगर का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1807199 और जम्मू का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1180-7198। आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा डीटीएच के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण। अभी तक आपको

बताते चले जो सुबह के टाइम जो भगवती नगर से एक यात्रियों का काफिला जो निकल पड़ा था, तकरीबन जो है 7,000, 6,000 से जायद, तकरीबन 7,000 का काफिला जो है वो सुबह निकल चुका था और अभी गाजीगुंड भी उन्होंने क्रॉस किया है, जिसमें पुरुष जो है वो तकरीबन 4,720, महिलाएं जो है वो 1,458, बालक जो है 25 उनमें शामिल है, और इसी तरह से साधु 54 और साध्वियाँ जो है 12 साध्वियां उनमें शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

श्रोतों, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। मेरे संग मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोतों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी किसी अपने से रूठे होंगे या शायद कोई अपना आपसे नाराज होगा, लेकिन जब आप इस पवित्र यात्रा पर निकल ही पड़े हैं तो इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि दिल की सारी कड़वाहट को पीछे छोड़ दें। वैसे भी माफ़ करना या फिर जो है सॉरी बोलने से या किसी को माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता है, बल्कि इंसान का जो अपना दिल है वो हल्का होता है। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में। आगे भी भावनाओं की बातें होंगी, आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी 2026 का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओ, इसी बीच हमारे तक जो है हमें ताजा तरीन दर्शन रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो है आज कुल जो है 2256 यात्रियों ने जो है वो दर्शन मुकम्मल किए हैं, जिनमें 1288 पुरुष, 757 जो है वो महिलाएं उसमें शामिल है, और 73 बालक, एक साधु और 137 जो है वो हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं इनमें शामिल हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी पड़ाव पर हैं आपकी यात्रा जो है वो सफल हो, वो सुखद और सफल हो। श्रोताओ, हम दर्शन रिपोर्ट बताने से पहले बल्कि बात कर रहे थे भावनाओं की और रूठने मनाने की हम बात कर रहे थे। श्रोताओं, आप तक मैं ये अपनी जो है जज्बात पहुंचाऊं कि कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की ये पकड़ी हमें यही संदेश देती है कि बीते हुए कल के दुख, अफसोस और गिले शिकवे को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन आने वाला हर पल एक नई शुरुआत का संदेश जरूर लाता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने

0: और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
2: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
1: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency NTA has terminated 47 officials from service. This is part of a complete overhaul of the NTA following controversy over paper leaks. Delhi Police has constituted a special task force to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that his remarks to the media outside Parliament had been maliciously doctored, using artificial intelligence to create and circulate a deep fake video in an attempt to spread misinformation. In a social media post, Mr. Goyal said he had filed a police complaint and an FIR has been registered at the Chanakipuri police station this morning. In Ladakh, Kargil War Memorial at Dras is fully prepared to host the grand celebrations of the 27th Kargil Vijay Diwas, commemorating India's victory in Operation Vijay. The two-day commemorative events beginning today with a series of programs honoring the courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Forces who laid down their lives during the 1999 Kargil War. Tomorrow, Defence Minister Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. The Yatris have been advised to strictly adhere to the advisories issued by the administrations for a safe pilgrimage. In Assam, more than 1,15,000 people have taken shelter in relief camps as the flood situation continues to remain grim, with the worst impact being felt in Sivasagar, Charaideo and Jorhat districts. 14 more flood-related deaths have been reported. Rescue and relief operations are being carried out on a war footing following the heavy rains in Gujarat. 5 deaths confirmed so far by State Relief Commissioner. The IMD has forecast very heavy rainfall today in parts over Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of the three-match series at Harare at 4:30 p.m. Indian time in the afternoon. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of this prestigious tournament. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण. एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं. श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनिए भक्ति संगीत.

श्रोताओं, जैसा कि मैं अक्सर आपसे बोलती रहती हूँ कि सेवा भाव इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। सभी सेवा दल, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ तक के गाठी के जो मकामी लोग हैं, वो लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। अगर आप भी यात्रा पर हैं तो प्रशासन की सभी सलाहों पर अमल करें, मौसम और मार्ग की ताज़ा सूचना पर ध्यान रखें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं। और सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओ, आपको बताते चले कि हमारी एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली और जिनसे हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं एक लिसनर है हमारी, डॉक्टर रेखा निरंजन मैम। मैम, हम आपको आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हमेशा जो हमारी हौसला अफजाई करती हैं, जो कि इस वक्त भी हम तक जो इतला मिली है वो ये है कि आपने हमारी इंजीनियरिंग स्टाफ जो है उनके लिए कुछ जो है उपहार भेजे हैं, कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। तो हमारी तरफ से पहले बहुत शुक्रिया, और हमारे जो इंजीनियरिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, खासकर जो हमारे अल्ताफ साहब हैं, समीर साहब हैं और जावेद साहब हैं, वो आपके इन उपहारों के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपका, और हमेशा हमें इसी तरह से जो है हौसला अफजाई हमारी करते रहिए और हमें सुनते रहिए। बहुत शुक्रिया।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स नेवज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ अभी तक आपके संग मैं बनी थी आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी और 12:30 बज चुके हैं और इसके बाद जो है आपका साथ निभाएगी आपके उद्घोषक सबरीना महराज। श्रोताओ यात्रा हमें यही सिखाती है कि रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, अगर विश्वास मजबूत हो और धीरज कायम रहे तो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलती है। इसी संदेश के साथ दीजिए मुझे अनुमति और आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, शाम के 6 बजे तक इस विशेष प्रसारण में आपके साथ रहूंगी, आपकी साथी रेडियो साथी सबरीना महराज। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित रहेंगे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा।

0: सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन ईयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार

देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 1 बजे तक कुल 3,296 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 1948 है, महिलाओं की संख्या 1,037 है, बालकों की संख्या 120 और साधु की संख्या 3 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 188 रही है।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर के 1:50 होने जा रहे हैं। हुण तुसी सुनो उर्दू समाचार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1,00,000 से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और सीजेपी के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदुदुमानियों के मामलात की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्कॉश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि

0: हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जाने तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासरा इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुकाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशुसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायात पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौ मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा दो रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वजीर आजम ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक सीजीपी के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाअत की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर समाअत मुकम्मल की जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और जंग में शामिल फौजियों की तजुर्बात शामिल थे। कल वजीर दफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीबात की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहदा की याद में तामीर किए गए इस यादगार को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। 2 रोजा तकरीबात का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। करगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का

0: गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कैनेडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामिह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोरों शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वक्त के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदनुमानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. The Diko, Disang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are underway, with disaster response teams and district authorities providing assistance and closely monitoring the affected areas. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In a social media post, Mr. Sarma said the Prime Minister sought an update on the extent of the devastation, the progress of relief operations and the challenges being faced on the ground. He said that Prime Minister Modi assured him of every possible assistance from the central government to support the ongoing relief, rehabilitation and reconstruction efforts. Mr. Sarma also said that the people of Assam are deeply

0: Devshayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Chandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Farhat Naz. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन, वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की, स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई, इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून

0: स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: सीआरपीएफ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार

0: व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

0: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दोपहर 2 बजे तक कुल 3,506 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 2,093 और महिलाओं की संख्या 1,082, बालकों की संख्या 127, साधु 6 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 198 है। श्रोताओं, अगर आप या आपके सहयोगी इस मुकद्दस यात्रा पर हैं तो इस खास नशरियात में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े अहम हिदायत ये हैं कि मौसम और यात्रा अपडेट पर नजर रखें। जम्मू कश्मीर प्रशासन और मकामी पुलिस की रोजाना की एडवाइजरी जरूर चेक करें। अपने पास पहचान पत्र और आपातकालीन नंबरों की हार्ड कॉपी जरूर रखें। आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल रहे। सुनते रहे भक्ति गीत।

0: जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी जावेद साहब,
1: बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जम्मू में सुबह से ही आज बारिशें कहीं तेज कहीं हल्की लगातार जारी हैं। कल जैसा कि मौसम साफ हुआ था और सूर्य देवता ने भी दर्शन दिए थे, लेकिन उसके बाद आज मौसम फिर से एक बार दोबारा अपनी लय में आ गया है और उसकी वजह से जो है कि बारिशें तेज और कहीं हल्की भी बारिशें चल रही हैं, लेकिन सुबह से बारिशें चल रही हैं। इस बीच आज सबसे अच्छी खबर तब सामने आई जब सुबह पवित्र श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा का 18वां जत्था 6000 से ज्यादा की संख्या में 6 दिनों से स्थगित रहने के बाद यहाँ भगवती नगर के निवास स्थान से जोशो जज्बे में बाबा बर्फानी के फलक शिगाफ जयकारों के साथ रवाना हुआ। ये एक अच्छी खबर थी और इस खबर ने श्रद्धालुओं के लिए एक नया जज्बा, एक नया जोश भी भर दिया, क्योंकि 6 दिनों से लगातार स्थगित यात्रा से तीर्थ यात्रा जो थी वो एकदम रुक गई थी। लेकिन जैसे ही मौसम कल साफ हुआ, प्रशासन की पूरी तरह से जो कोशिश रही कि तीर्थ यात्रा को रवाना करना है और उसके लिए जितनी भी कोशिशें थी, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर थी या उसके अलावा जो तीर्थ यात्रा घाटी की ओर जा रही थी, हालांकि घाटी में भी बारिश लगातार जारी थी, लेकिन उसके बावजूद तीर्थ यात्रा को आज सुबह यहाँ तड़के पहले निवास स्थान भगवती नगर से रवाना कर दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में जोश भर गया। इस बीच तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति की खबर से मैं बताऊं कि श्रद्धालुओं के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं थी। श्रद्धालुओं की खबर का इस खबर का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे और बाबा बर्फानी के दौर की तरफ जाने की अनुमति उनके लिए त्योहार जैसी खबर थी। जैसे ही देर शाम भगवती नगर निवास स्थान में अनुमति की खबर आई तो श्रद्धालु खुशी से झूम उठे, मानो उनकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हो गई हो। इस दौरान निवास स्थान भगवती नगर में लगातार पंजीकृत श्रद्धालु दोबारा पहुंच गए हैं। हालांकि जम्मू में आज भी मैं कह रहा हूँ कि ऑरेंज अलर्ट है और खूब बारिशें दोबारा हो रही हैं। स्थानीय लोग आज भी बाजारों में, उनकी संख्या कम है और श्रद्धालु भी सुबह से ट्रांजिट कैंप्स में ही विश्राम कर रहे हैं। यहाँ उनके लिए मैं कहूँ तो इंतजाम में किसी तरह से कोई कमी नहीं है। पहले दिन की ही तरह तमाम लंगर, तमाम व्यवस्थाएं, प्रबंधन सारी अपनी जगह बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें वक्त पर खाना, आराम, पूजा अर्चना, भजन संगीत और भक्ति का जो पूरा माहौल है तीर्थ यात्रियों के लिए बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने के लिए वो भी प्रेरित करता है उन्हें। और सावन के इस महीने में सुबह के जैसे आज लगभग 9 सावन है और इस सावन में खास तौर पर मंदिरों, धर्मशालों और धार्मिक स्थलों पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है और पूजा अर्चनाओं में बाजाबता हिस्सा लेते श्रद्धालु भी देखे जा सकते हैं और खासतौर पर इन ट्रांजिट कैंप्स में भी पूजा अर्चनाएं, भजन और भक्ति संगीत का पूरा लुत्फ उठाते श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी और बड़ी खबर यही थी कि आज हजारों, लगभग 6000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से घाटी की ओर रवाना हुए और जो अभी श्रद्धालु यहाँ है उनकी उम्मीदें उजागर है। हालांकि मौसम आज फिर से दोबारा खराब हो गया है और बारिशें तेज है। खबर है कि घाटी में भी बारिशें लगातार जारी है और इस बीच यहाँ भी बारिशें लगातार जारी है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम करने वाले योद्धा है, मैं उनको योद्धा कहूंगा क्योंकि लगातार इस बारिश के दौरान भी भूस्खलन भी हुए, रास्ते बंद भी हुए, लेकिन उसके बीच लगातार जो सड़क की हालत को बराबर बेहतर बनाया गया और इस बीच आज सिर्फ बालटाल की तरफ ही ये जत्था जा पाया। पहलगाम की यात्रा फिलहाल स्थगित है क्योंकि मौसम जो है अभी पहलगाम जो कि प्राचीन रास्ता है इस यात्रा का, तो यहाँ ये सख्त रास्ता भी है बनिस्बत बालटाल के रास्ते के, इसलिए हालांकि सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पसंद करते हैं, इसका प्राचीन रास्ता ही पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज सिर्फ बालताल के ही रास्ते से श्रद्धालुओं को अनुमति मिली निकलने की। और सुबह लगभग कोई 11 बजे के करीब ये जत्था

0: तैयार है कल के लिए। अब ये मौसम पर सारा डिपेंड करता है, ये सारी मौसम की सारी कहानी है, क्योंकि सारा सफर ही मौसम से जुड़ा हुआ है, मौसम की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो समीक्षाएं होती हैं उच्च लेवल पर भी और अधिकारी लेवल पर भी, वो सब दिशा निर्देश पर अमल भी हो रहा है, और यात्रु भी जो है वो गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल करके यात्रा में हिस्सा ले रहा है। जी
1: धन्यवाद जावेद मेहराब साहब,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत।
1: तो ये थे हमारे साथ जम्मू से संवाददाता जावेद मेहराब। आपकी यात्रा सुरक्षित रहे और सफल रहे। सुनते रहे भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के जरिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बानीहाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी मोहम्मद तस्कीन, बताइए।
1: जी शुक्रिया। पिछले तीन घंटों से, करीबन 3.5 घंटों से बारिशें हो रही है पूरे यहाँ रामबन बानहाल क्षेत्र में, और जो कल से मौसम ठीक हुआ था, बेहतर हुआ था, तो लेकिन पिछले 3 घंटों से करीबन

0: अलावा जो हुकाम की तरफ से जो रियासती इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उनकी तरफ से भी आला किस्म के इंतजाम, जैसे पीने का पानी है, बिजली है, सेहत और सफाई है, छोटे हस्पताल कायम किए गए हैं, अस्पताल चंद्रकूट में भी कायम किया गया आरजी अस्पताल यात्रियों के लिए, और बानहाल में भी कायम किया, वहां पर डॉक्टर बाजाबता अराउंड द क्लॉक बैठते हैं। तो इस तरह जो ओवरऑल जो है ठीक है सिचुएशन उनके लिए, जो यात्री हैं जो यहाँ पर थे बिल्कुल आराम से थे, और किसी किस्म का भी अभी तक अगर कहेंगे यात्रियों की तरफ से कोई भी शिकायत, एक शिकायत भी मौसूल नहीं हुई, जबकि अभी तक मतलब इतने दिन गुजर गए, 2 तारीख से मुसलसल यात्रा चल रही है, तो पिछले 24-25 दिनों में किसी किस्म का भी कोई शिकायत नहीं है और सब कुछ जो है बिल्कुल खुश असलूबी और बेहतर तरीके से चल रहा है।
1: धन्यवाद आपका मोहम्मद तस्कीन, धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ बानिहाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। आपकी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित रहे, और सुनते रहे भक्ति गीत।

जी श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना के जरिए। श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 3 बजे तक कुल 3,708 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 2,213 है, महिलाओं की संख्या 1,142, बालकों की संख्या 133, साधु 10 हैं और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 210 हैं। आपकी यात्रा सफल रहे, सुखद रहे।

0: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम चैनल के जरिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जो हैं एस तारेक, जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे अब तक के कुछ खास अपडेट्स। जी तारिक साहब बताइए।
1: बहुत शुक्रिया सबरीना जी, बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: पहलगाम के प्राचन अमलेश्वरी मार्ग पर बारिशों का एक नया दौर शुरू हो गया है। 6 दिन के आरंभ के बाद आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का पुण्य शुभारंभ लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिगड़े हुए मौसम और यात्रा मार्ग पर जो प्रशस्ति को देखी हुई थी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा को 6 दिन के लिए आरजी रूप से मुअत्तल रखा गया था। मौसम में सुधार आने और यात्रा मार्ग के पूरी तरह सुरक्षित करार दिए जाने के बाद यात्रा का पुण्य संचालन आरंभ हो गया है। आस्था और श्रद्धा और उत्साह से इस पवित्र यात्रा में आज सुबह 3:30 बजे ननवन आधार शिव से रवाना होने के बाद 4,231 यात्री चंद्रवाड़ी से होते हुए शीशनाग और पंचतरणी पहुंच चुके हैं। 3,240 पुरुष, 906 महिला, 69 साधु और 16 साध्वी शामिल थे। प्रशासन के द्वारा हर पड़ाव पर बारिश से बचने के लिए शेल्टर और टेंट्स पहले ही स्थापित कर रखे हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिव से 230 छोटी बड़ी वाहनों में 6,272 यात्रियों पर मुश्तमिल एक नया जत्था बालतल मार्ग की तरफ वो पहुंचा दिया है, जिसमें 4,720 पुरुष, 1,458 महिला, 25 बालिका, 54 साधु और 12 साध्वी शामिल थे। पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए फिलहाल आज कोई भी यात्री रवाना नहीं किया गया। अब मौसम को मद्देनजर रखते हुए शायद भगवती नगर से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए चंद्रोज के लिए यात्रियों के आने में वक्फा दिया जा सकता है। 4,00,000 श्रद्धालु पहले ही बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। आज रिपोर्ट फाइल करने तक यानी 3 बजे तक 3,708 श्रद्धालु ने दर्शन प्राप्त कर लिया है और यात्रा का ये पवित्र काम जारी है। इस समय पहलगाम और इसके आसपास के क्षेत्र और यात्रा मार्ग में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त पहलगाम से पवित्र गुफा तक कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यात्रा प्रशासन की ओर से जो श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक
0: जी मुझे ये बताइए, क्योंकि इस वक्त खराब मौसम फिर से वादी कश्मीर में चल रहा है, तो हमें बताइएगा क्या कुछ खास इंतजाम हमारे यात्रियों के लिए किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी 6 दिन तक हमारे जो तकरीबन 6,000 से ज्यादा यात्री जो नुनवन बेस कैंप में ठहरे हुए थे, तो वहाँ उनके लिए हर किस्म की जो जो सुविधा थी वो उपलब्ध रखी गई थी। हर चीजें थी, टेंट थे, जो वाटर प्रूफ है, जो हटे हैं वहाँ, जो विंड प्रूफ है, सब कुछ, खाने पीने के लिए जो लंगर, तकरीबन 13 लंगर थे। और इसी तरीके से बिलतरतीब यात्रा, फिर उसके बाद आते हैं चंद्रवाड़ी में उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ जब वो उनका सफर पैदल सफर शुरू होता है, तो हर जगह पे उनको हर 1 किलोमीटर के बाद शेल्टर मिलते हैं। अगर कहीं भी बारिश या कोई आफती आ जाती है तो प्रशासन के द्वारा वहाँ पहले इंतजाम वो जो एस्टेब्लिश किया गया होता है, उनमें टेंटर्स होते हैं, उनमें जो बारिश से बचने के लिए शेल्टर होते हैं, और अगर फिसलन हो तो उनको रोक दिया जाता है, और उनकी हिफाजत के लिए और उनकी जान के बचाव के लिए हर एक चीज वहाँ मौजूद रहती है। अगर किसी को खुदा नखास्त कोई तकलीफ भी होती हो या ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल वहाँ इंटैक्ट होते हैं, वो बिल्कुल अपने जिम्मेदारियों से लेके तमाम चीजों से लेस होते हैं, वहाँ उनके उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बराबर इस वक्त जो हमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो श्रद्धालु सुबह को निकले हैं वो चंद्रवाड़ी से होते हुए इस वक्त शेषनाग और पंचतरणी में पहुंच गए, जहां उनका अच्छे खासा इंतजाम है और वहां भी टैंक्स वगैरह, विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ टैंक्स लगे होते हैं और लंगरों का इंतजाम होता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब यात्रियों के हवाले से अपडेट देने के लिए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ एस तारिक संवाददाता जो है अनंतनाग से, इन्होंने यात्रियों के हवाले से अपडेट दिया। आपकी यात्रा

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल

0: ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास यात्रा को लेकर। जी रिजवान साहब, बताइएगा।
1: जी मैम, यात्रा के हवाले से हम अपने श्रोताओं को इस तरह की सूचना देना चाहते हैं कि इस वक्त बालतल के पूरे क्षेत्र में कैसा वातावरण है, मौसम की स्थिति कैसी है। तो इस दौरान जो धार्मिक यात्रा है वो अच्छी तरीके से खुश असलूबी से जारी है। वादी में वर्षा एवं खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद आज शनिवार को श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से फिर से शुरू हो गई। मौसम की स्थिति तथा सुरक्षा के कड़े प्रबंध मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यात्रा को दोबारा चलने की अनुमति दी है। अब तक देश के विभिन्न भागों से 3,90,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम के दर्शन किए एवं देश तथा घाटी की अमन शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। तीर्थ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई।
0: जी, श्रोताओं, शायद इनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। हम दोबारा कोशिश करेंगे इनसे राबिता करने की। तब तक आप सुनते रहिए संगीत, भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ रहीम रिजवान के साथ फिर एक बार दोबारा संपर्क हुआ है। जी बताइएगा रिजवान साहब।
1: हम बात मौके मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ मौसम की स्थिति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मौसम बिल्कुल खराब है। यहाँ पे वर्षा हो रही है, आकाश पर घने बादल छाए हुए हैं। इस बीच बालतल के बेस कैंप में यात्रियों में पवित्र गुफा जाने की काफी उत्साह पाई गई, जिसको लेकर प्रशासन ने आज सुबह 4 बजे से पौने 9 बजे तक 3,633 श्रद्धालु को बालतल मौके मार्ग से पवित्र गुफा जाने की अनुमति दी है। सुबह 4 बजे से दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 2,362 पुरुष, 1,090 महिलाएं, 33 बालक बालिकाएं एवं 148 सुरक्षा कर्मी थे। श्रद्धालुओं ने पैदल डांडी एवं गोडू पर सवार होकर ऊंचे पर्वतों के बीच अपना यह पवित्र सफर शुरू किया। पवित्र सफर के दौरान उन्होंने रेनकोट, लाठी, गर्म कपड़े, पानी की बोतलें एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ रखी थी, क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र में मौसम पल पल बदलता रहता है, लिहाजा यहाँ आवश्यक वस्तुएं साथ रखना न भूले। इधर सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 3 बजे तक 1,570 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 934 पुरुष, 460 महिलाएं, 61 बालक बालिका, 2 साधु एवं 113 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। दर्शन से प्राप्त हुए श्रद्धालु ने व्यवस्थाओं के बारे में आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जबकि चारों ओर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा उनकी या तीर्थ यात्रा बिना किसी बाधा के सफल हो सके। और अगर हम यात्रा रूट के हवाले से बात करेंगे तो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर हमें यात्रा रूट पर 2 महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, जिसमें ट्रांजिट कैंप शादीपोरा एवं ट्रांजिट कैंप मैनगाम शामिल है। तो दोनों ट्रांजिट कैंपों में सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जिला अधिकारी जो है मुख्तलिफ विभागों के उनको चाको चौबंद रखा गया है ताकि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और इस तीर्थ यात्रा के दौरान उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी जाए। और इस हवाले से यात्रियों के साथ भी हमने बात की है तो उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आकाशवाणी को बताया कि वो इस वर्ष जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर

0: भी संतुष्ट हैं। तो इस तरह आज अगर जो वर्षा हो रही है बादल के पूरे क्षेत्र में और वादी के दीगर अजला के साथ साथ गांधरबल जिले में भी, तो इस दौरान जो अमरनाथ यात्रा है वो बिल्कुल धार्मिक रूप से जारी है।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब,
0: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ गांधरबल से हमारे संवाददाता।

0: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी श्रोताओं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी इमरान साहब।
1: जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी श्रीनगर में काफी तेज बारिश हो रही है और सुबह जिस तरह से हमने अपडेट किया था कि मौसम बिल्कुल ठीक था और धूप भी निकली थी, लेकिन तकरीबन 10 बजे से मौसम में फिर से करवट बदली और बारिश शुरू हुई और इस वक्त बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश से पहले आधे घंटे पहले हो रही थी। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का जो सिलसिला है वो पिछले तकरीबन 2-3 घंटों से लगातार श्रीनगर में जारी है और ऐसे ही कश्मीर वैली की बाकी जगहों पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। और मैंने अभी कुछ घंटे पहले चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से अपडेट भी जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि उनकी जो मैन एंड मशीनरी है वो एक्टिवेट की कर दी गई है ग्राउंड पर और सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता जहां तक अमरनाथ जी यात्रा का ताल्लुक है, जैसे हम जानते हैं कि आज 6 दिन के बाद अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम की वजह से जो सस्पेंड हुई थी उसको रिज्यूम किया गया, दोबारा से शुरू कर दिया गया और 6,000 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर पहुंचे और यहां श्रीनगर के पांथर चौक ट्रांजिट कैंप पर भी अमरनाथ जी यात्रियों का जत्था जो है वो पहुंच रहा है और यहां पर वो नाइट स्टे करेंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर मौसम खुशगवार रहा, मौसम में बेहतरी रही, तो कल सुबह इनको अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और साथ ही सुबह यहाँ जो पिछले कुछ रोज से कुछ यात्री रुके थे उन्हें सुबह अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा इस वक्त सारी सूरत हाल जो मौसम के बाद की पैदा हुई है, इस पर पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मॉनिटर कर रही है और इवन के जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्टिव है और सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और इवन के जो कंट्रोल रूम्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा

0: कंट्रोल रूम्स के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पर भी इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं, और कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर लोग अमल करें, और किसी भी असिस्टेंस या कोई भी मदद के लिए वो 01942740003 पर ICCC श्रीनगर से कॉन्टैक्ट करें, 01942740003 पर ICCC श्रीनगर से रब्ता करें अगर किसी को भी किसी असिस्टेंस की जरूरत हो।
1: जी, तो हमें बताइएगा कि हमारे यात्रियों के लिए, क्योंकि आज 6 दिनों के बाद जब मौसम ठीक हुआ, साजगार हुआ, यात्रियों के जो है वो यात्री को बहाल किया गया, लेकिन अब फिर वादी कश्मीर में या घाटी में फिर एक बार मौसम नासाजगार रहा है तो जारी है, इतने में हमारे यात्रियों के लिए क्या कुछ ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं? जी
0: देखिए, जैसे हम सुबह से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि पहले तो सुबह मौसम साफ था लेकिन उसके बाद जो बारिश शुरू हुई और इवन कि अभी भी बारिश हो रही है, तो यात्रियों के लिए यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से एडवाइजरीज इशू की जा रही है वो उन एडवाइजरीज को फॉलो करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको वो फॉलो करें, उसको देख लें, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स पर जो हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं उनके साथ रबते में रहे, और गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स उन पे वो रबता कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की खासकर जो डूज एंड डोंट्स है, जो एडवाइजरीज है, जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अदरवाइज जो जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें हैं और जो अरेंजमेंट्स हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो अरेंजमेंट्स पहले से ही गवर्नमेंट ने रखी हुई है, और इन सब के बीच में भी अगर किसी यात्री को किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो, असिस्टेंस की जरूरत हो, तो वो फिजिकली भी वहाँ ट्रांजिट कैंप्स पर हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी वो असिस्टेंस गवर्नमेंट से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम जल्द से जल्द बेहतर हो। मौसम विभाग का यही कहना है कि ये जो बारिशें हैं ये इसी तरीके से होती रहेंगी, फिलहाल बीच में मौसम बेहतर होगा, बीच में बारिशें भी होंगी, और अलबत्ता हैवी रेनफॉल की अभी तक जो है कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि मौसम बेहतर ही हो, साजगार ही हो, और सुहाने मौसम के बीच में अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर सके।
1: जी इमरान नायकू साहब, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ के इस विश्राम के समय अपनी सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखें और स्वच्छ पानी का ही सेवा करें। एक विनम्र निवेदन है कि कैंप और आसपास के इलाके में कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक और गंदगी को कैंप में बने डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छता और सुरक्षा, यही है यात्रा की सच्ची भक्ति। आपकी यात्रा सुरक्षित, सुखद और सफल रहे। सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 4 बजे तक कुल 3837 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2303 है, महिलाओं की संख्या 1162 है, बालकों की संख्या

किया 141 हैं, साधु 10 हैं और ट्रांसजेंडर की संख्या जो है वो 3 है और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 218 है। श्रोताओं, पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है, इसीलिए वाटरप्रूफ जैकेट और थर्मल वेयर साथ रखें। ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज का ही इस्तेमाल करें ताकि फिसलन भरे

सुखद रहिए, सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। हम प्रार्थना यही करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित और सुखद रहे। सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए 5:30 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आरती।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् है। जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं, MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षी गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षी घृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षी गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षी गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। आप अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे थे। FM बालतल, FM पहलगाम और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर समीर अहमद भट्ट और उनके साथ हैं एजाज अहमद कुरकू और उनके साथ मोहम्मद सलीम और मैं हूं आपकी अद्घोषिक सबरीना महराज और इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। श्रोताओं, इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। आपकी यात्रा सफल रहे। दीजिए इजाजत, शुभ यात्रा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AI।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए आगे।

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूं। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूं। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि पामन के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघ पीर चरण रथ होहु।
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे, बातों ही बातों में सगेरा हो गया।
4: तात, कृपा कर कीजिए सोए, जाते अवध अनाथ न होए।
2: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
3: कैकेयी से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
5: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है।
2: सुमंत्र जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
4: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
2: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन

0: तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
1: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
2: किंतु राजकुमारी जी,
1: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा।
2: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा?
1: सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय करबि परि पाए। मोर सोचु जनि करै कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे।
3: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
0: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
4: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
0: क्या कह रहे हो तुम?
4: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु एही।
0: कहां चरण और कहां चढ़ी?
4: जी हां, जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखनु, पै जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसी दास, नाथ कृपाल पार उतारी हो।
0: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
5: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
2: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
0: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
1: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
0: केवट, पार की उतराई ले लो।
2: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
1: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
6: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो? कैसे केवट हो तुम?
2: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
0: तथास्तु।
5: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
2: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
7: भद्र, कैसी शीतल छाया है। हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे। क्षण यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
2: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
0: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
7: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
0: सीते, लक्ष्मण, जल ग्रहण करो।
1: धन्यवाद।
2: चलिए हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
0: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
1: चलो आओ, चलो चलो चलो चलो। सखी, कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया। विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला। कितने सुंदर है ये।
8: वाह,
1: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहू मृग मृग देख ही दिया से।
8: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछे।
1: चलो राजकुमारी, विनय हम करही, तियाए सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
8: स्वामी, अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
1: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे।
8: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: ही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जा ही चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरत

0: रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धर नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी।
1: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
0: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि परम, अभिगत अगत अपार, नेति नेति नित निगम कह, जगपेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानि निहारा, सोई जानै जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहाँ वास करूं।
0: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हूं वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल, हंस ने जी हां दासु मुक्ताहल, गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कई बसहु सीय सहित दो भ्रात।
2: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: லக்ஷ்மன், சீதா, ஹரா, லக்ஷ்மன்.
1: அப்னே மன் மே பாந்தி பாந்தி கே விசார் கர்த்தே, ஸ்வயம் கு பாபி ஓர் அபராதி மானதே ஹுயே, ஷோகாகுல் சுமந்திர கிசி பிரகார் அயோத்யா பஹுஞ்சே. நகர் மே பிரவேஷ் கர்த்தே சுமந்த் ஏசே சப் ஜாதே ஹே மானு கிசி கி ஹத்யா கர்கே ஆயே ஹூம். உன்ஹோனே சாரா தின் ஏக் பேட் கே நீச்சே பைட் கர் பிதாயா. சந்தியா கே சமய் அந்தேரா ஹோ ஜானே பர் உன்ஹோனே நகர் மே பிரவேஷ் கியா ஓர் ரத் கோ த்வார் பர் ஹி கடா கர்கே சுப் சாப் மஹல் மே குசே. ரத் கோ பஹச்சான் கர் ஓர் கோடோ கோ வியாகுல் தேக் கர் லோக் விஷாத் கிரஸ்த் ஹோ உடே.
2: जय जी
0: राम.
2: महाराज के चरणों में सुमंत्र का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो.
0: सुमंत्र कहो, राम कहाँ है? इधर आओ सुमंत्र, इधर, तुम्हें अपने हृदय से लगा दूंगा. राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही. उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? सखा राम उसी लखु जय तहां मोहि पहुंचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहु सति भाव.
2: महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी. महाराज श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, भरत, पूर्ववासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो.
0: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
2: सीता जी कुछ कहना चाहती थी. उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई.
0: हे सुमंत, कृपालु राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मेरे स्नेही राम कहाँ है? मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है? राम कौशल्या श्रवण कुमार कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है. राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा? हमें धिक्कार है. प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा?
3: और रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जियत बहुत दिन बीते. जानकी लखन हार रघुवर.

0: प्रातःकाल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते। उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पुर पगु थारू।
2: तात, तात,
1: भरत,
2: तात,
1: भरत,
2: अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
2: पापिन सबही भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
1: बेटा,
2: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो। तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विधि सन कछु न बसाए।
1: बेटा,
2: हाय जब तय कुमति कुमत जी अठयउ खंड खंड होई हृदय न गय। परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परेव न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकी नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी।
1: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
2: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई आंखें ओटी उठी बैठ ही जाए।
3: तू रोक भी।
2: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
1: हे पुत्र, तुम धैर्य धरो।
2: जननी, जे अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ बहुसुरपुर जारे, जे

0: प्रिय बालक बध कीने, मीत महीपति बाहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कभी कही, ते पातक बोई हो विदाता, जो यो हो मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, ते कई गति बहि देउ विधि, जो जलनी मत मोर।
1: हे तात, विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बेरागी, भये ज्ञानु परु मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
2: अस कही माँ तु भरत हिये लाए, धन पय स्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
3: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनहु भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस वाप जस विधि हाथ, अस विचार के ही देई ये दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
4: लेकिन
3: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण, उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
4: आप कह तो रहे हैं पर
3: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
1: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
4: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राज कहीं लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
1: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
3: वत्स, कौशल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं, उठो और पश्चाताप मत करो।
4: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं, किंतु आपने दारुण दीनता, कहूं सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरन न जाए, आन उपाऊ मोहि नहीं।

0: सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा, एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही।
1: धन्य धन्य है महाराज भरत, धन्य है महाराज भरत।
0: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
1: महाराज भरत की जय। महाराज भरत की जय।
2: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई, सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भाव बड़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।